la ya thi thi jat jati tamuna anugulina newate biche jati sanstha ta duni odako sanstha ta sathaya chuni mala newate go lagi jaya ta wa thagu sanskriti eta link ta ta ka sai ana chago sahala aju se suri sai jinugungu jati pucha tamuna ale aja hana pingu ke thape ju ase athyo bale karib ani sungu thenam la ni sungu jati khala pucha abadu ja yela newas samaj gathan jugo jula ale oke Soda Funapi the Kingulasta, Sukogu Palista D, Honigus Hagudia, Loga Kyoya, Saza Party Palace Ejula, Ale Anase Bagmati Pradesia, Mukimantri, Indra Bahadur Bania, Vekose Mu Pahakota, Tingu Vajazosa, Bagmati Pradesia, Yokohe Samsat Pina on a Tinguzula, Visit another Yellow Jilla Pahe, Pratin Toyana, Terasopi, Neva Samsat, Yokotimuzula, Yellow Jilaya. विभिन्न राजनीतिक दल या सभापति पि संयोजक पि विकपिन थेमोजुला सा येला महानगरपालिका या उपप्रमुख जुन थेमोजुला अले नेवा दिए दबु या नाय रश्मिना प्रजापति न थेमोजुला वजा जस अले हले नेवा दबु या नाय रमेश मुनि कारण थेन अथे यकु यकु हे अन आजादी खला पुसा पाखे बिबले ला यकु मन थेमोजुला अले अन दकले येपुको दकले बालागु चाहिँ दतागु ज्याजो यु सुरुवाते छगु अन बज्र योगिनी पेखा तल मला अब बज्र योगिनी ढिउला छौ आधा नेवाते को बिचे तस्क हे व लोक भाग जिरु ल थपले चर्या पेखा अले छ द चाहिँ बिस्क तागु चाहिँ अन खड्गी समाज पाखि नाखि बाजो थाना अन चाहिँ पेखा छौ चाहिँ अन तल मला व चाहिँ तस्क हे नुगु तल चाचा जी चाहिँ आतको मखनी नाखि बाजो व जस्तै रैली मखला व मेरा मेरा चाहिँ खन सङ्गु तर नाखि बाजो यो ताले पेखा हुगु चाहिँ दक्ले नपा खङ्गु अले Naki Bazo, Chimishi Puzagana, Giliana, Mono Hiliana, Mala, Pahalu, Pisa, Pima Missapi, Ole Chimishi Puzale, and Toscono Tanaza Pinchir, Gopi Mostano, Gaza involved Mutatoguli, Jos, Noxon, and Wake up San Bazan Tanadilla, one or two Neva Samazias who accept Jula Neva Samazias at Hugo would say, Poisanzula, Sonia Blaze, Time Bazon, Zotana, Time, you bully Pahola, so corporate him laze, Naki Bazon, you pretty volley nozula. Ole on a अ अनज्याजोले छुन खसिरल लगाइदै थिए आइ म नया भाजु नातिकाजी सक्यो वे कल धैर्य कथ चाहिँ भुख्या बे ढुङ्गा दक अपराइ थिए दियो चाहिँ अब पुनर्निर्माण जुल तर बुङ्गो दियो यु दियो चाहिँ पुनर्निर्माण म जुल छु भने एजिया व जाया त येला निवास समाज चाहिँ थ नेतृत्व कासे 80 लाख करिब 80 लाख ता मुगा बुङ्गो दियो यु बि दियो गर्न पुनर्निर्माण यानाको खन कना दिला ने नाप येला निवास समाज या थगु हे भवन देके त तुसि बागमती प्रदेश सरकार पाखे 35 लाख देवा अन तैबियो गु खन अन जानकारी बिल विशेष न चाहिँ माननीय रामकृष्ण चित्रकार जु हो खन दिल अले अझ न मु पहा न चाहिँ मु पहा मुख्यमन्त्री जु 35 लाख सक मरु मखु चिक पिसा ज्यान न धासा जिमी गु कार्यकाले आए मखला आज बि थन सांसद ज्या चौतले जिम स चाहिँ एक करोड तक न बीफ तै गु चाहिँ खलान दिले न्या सा बालक जुल ओले छौ खजै छुरगा दैले विशेष जना आथो मुख्यमन्त्री खलाबले गबे कलो चाहिँ आजि थगु नुग खते दे दबे नायक थ थगु नुग खते बले ओ खन त या जुल तर नाम कासे मुला त या जुल ना पछि आदिवासी जनजाति महासंघ यो बडी ज्याजो छ चाहिँ थो सायद आदिवासी दिवस बेले ख आदिवासी दिवस बेले ओबे कलो चाहिँ छौ ख दैदिगु खजै तस कहि विवाद जुलका ओ छु खले रगा दैबले आदिवासी आयोग या चाहिँ छुए ज्यामहरू थो आयोग आदिवासी आयोग निश्चित महिला आयोग म चाहिँ धोको डिजर्भ दियामा रहेको चाहिँ मुख्यमन्त्री खलाएको जुल मखला थो खास आदिवासी आयोग आदिवासी प्रतिष्ठान थोदै चाहिँ झी आदिवासी त मागो खोज्यो गैर आदिवासी देशौँ केही महत्त्व थुइ मखो तर न सार्वजनिक थासे हो या एक एना चाहिँ छ म जिम्मेवार भन्न नभएको ठिक मजु ख हामी घन बेक्ल भटी छ अजागुए मिङ्ग न अजागुए ख बेक्ल दैदिल थो जति लागि ख राजनीति या त मखु नगा राजनीति आत्ला पक्का न जाति संस्था मको तर राजनीति बुतिए मकैला से जाति संस्था पि मन्दे स अत्ला मको नि समुलाई जा थो बचा दनि थुके प्रस्तुता चाहिँ मधु थेन खन्दत का मुख्यमन्त्री आ त खलाबले अन द चाहिँ तागुला न्यासे आथौ जी जा जसो थो बुख त यागु मेन ता दैगु चाहिँ येला निवास समाज त स्कहे बालक जैन चंगदु अजागु बुङदेयु देगस
दन दस को मुख्य वेकअप सा था कुछ दन तो ना प्रयास रात दो अलग ना पां ये ले दुनिया गुली ना जातीय विविधता दो निवाद दुनी वो जातीय विविधता या तो कौग हसी दोकुशी तो साथे आया दोकुशी को समस्या मतलब दोकुशी को समस्या ना साथे आया स्वीटा माली बले जाएं वो तो कुहे चकलों है जागु जून चागु वेकअप सा जाएं कुता यान दिलो तो कहे बाला को कुता वेकअप सा याना सुना दी गुदो उके लगी वेकअप इन तो यो को सुबह अलेना पांच सो कोगु पलिस्ता दिया यो को तुनो गलानी से भी तुरा तासे

दिपादुङ काखनलासको छ ज्याझु नेपाली छिङ्गे नचना दिलो अले जिगुनाखा रश्मिला प्रजापति ज्याझु सा आमे बुख पाके भने क्यानाडियन नेवागुथिया पुलाङ्गु वा वर्तमान ज्यासना पुचया भेला सम्बन्धी छ बुख दु क्यानाडियन नेवागुथिया गुसाले गुथिया पुलाङ्गु वा वर्तमान ज्यासना पुचया दुज व सल्लाहकार ते छ गु मुज्याझु ल उंगु जुलाई 18 खुनु मिस सी सागाया पोर्ट क्रेडिट पार्के गुथिया पुलाङ्गु वा वर्तमान ज्यासना पुचया कार्यकारी बोर्ड या दुज व सल्लाहकार पिनिगु उगु मुज्या झु बुख उगु मुज्याया उद्देश्य पुलाङ्गु वा वर्तमान ज्यासना पुचया दथि स्वापु क्वातुकेगु अनुभव कालबेलियागु नाप गुथि पाखे थौंकने याना छुंगु गतिविधि क्रियाकलाप ज्याझो व भावी योजना बारे पुलाङ्गु नेतृत्व या त जानकारी बिगु जुगु कथ गुथि जानकारी बिगु जुल थुकियालिसे याक नहे जुगु नेपाली मेला व हिमालयन मेला क्यानाडियन नेवा गुथिया सहभागिता बारे न जानकारी बिगु ज्या जुगु ख थु कथ हे सेप्टेम्बर 26 से जुगु गुथिया थ गुए सांस्कृतिक ज्याझो समय बजिया तयारी या त कयान सहल जुगु ख नेवा संस्कृति व संस्कार दुने तसक महत्व जागु व प्रतीकात्मक परम्परा कथ कया त समय बजी ज्याझो गुथि थ गु स्थापना काल निसे तसक उत्साहपूर्वक निरन्तरता बिया वया चुंगुदु मुज्या बुथि कया दिपि पुलाङ्गु व नुगु ज्यास्ना पुचया दुज सल्लाहकार पिनस थ थ गु अनुभव व सुझाव त काल बिलिया गु ज्याझो गु खसा वर्तमान ज्यास्ना पुचल मध्यक गुहाली या त सही मार्ग निर्देशन व गुथिया ज्याझोले बुथि कात गुली गुहाली या गुली न प्रतिबद्धता पुङ्गु गु गुथि जानकारी बिगुदु वैगु अगस्त आथे नेथन फिलिप्स स्क्वारे जुगु अठिन च्याकोगु हिमालयन मेला जुइत्योङ्गु दिशा उगु मेला गुथि नेवा संस्कृति व सम्पदा विषय बोझायागु तयारी याना चुङ्गु खन नेथम्बुदु ज्याझो साक्न मेगु बुख पाख्यो भने आज सोकोगु अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा पत्रकार सम्मेलन जुइगु बारे बुखदो सोकोगु अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा पत्रकारिता सम्मेलन थोय भइगु श्रावण 24 निसे 27 गते तक ये यात्यङ्गु दु छगु नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ फोनिस व नेवा पत्रकार राष्ट्रिय दबुया मुङ्का गोसाले चुङ्गु उगु मुज्या अथे निर्णय यागु ख ज्याझो फनिजिया गोसाले पत्रकार दबुया संयोजने सार्क जर्नलिस्ट फोरम अन ग्वाली यागु जुगु दु थौं थौं ढका धाइ बले थोचाइ मिग चुङ्गु जिल मिग चुङ्गु मुज्या प्रारम्भिक योजना नाप कार्यक्रम बारे न कार्य योजना निभएको जुल सम्मेलनले हलिङ्ग करिब 40 देश मातृभाषा पत्रकारिता याना छवि पत्रकारिता सम्बोधिकाको अनुमान याना तगुदु पेनियङ्क जुइगु ज्याझोले प्यानल डिस्कसन कार्यपत्र प्रस्तुति सांस्कृतिक झाँकी प्रदर्शन नाप नेपाय पर्यटकीय थासेन अवलोकन याकिगु ज्याझो दु सम्मेलन यामु मातृभाषा पत्रकारिता या विकास याना व्यवसायिक देखिगु सरकारी नीति मातृभाषा पत्रकारिता या महत्व स्थापित याकिगु व सम्मेलन नेपाल राष्ट्रिय व अन्तर्राष्ट्रिय स्तरे नेपाल या मातृभाषा पत्रकारिता या उपलब्धि बारे न प्रचार प्रसार यागु जुइ धका गोसा खला कन धाको छ नाप भाषा लिपि संस्कृति संस्कार नाप सम्पदा या संरक्षण व अध्ययन अन्वेषण तक जुइ कथा सम्मेलन आज दु थो सोया न्य निक तक नेवा पत्रकार राष्ट्रिय दबुया गोसाले अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा पत्रकारिता सम्मेलन जुगु ख सम्मेलन सार्क जर्नलिस्ट फोरम व फोनिज सहकारी यागु ख तयारी बैठक नेवा पत्रकार राष्ट्रिय दबु पाखे नृपेन्द्र लाल श्रेष्ठ सुनिल महर्जन सुरेन्द्र भक्त के मानन्द राजु नापित प्रजित साके तेज नारायण महर्जन भूतिकाको खसा फनिस पाखे लक्की चौधरी समीर बलामी अर्जुन बहादुर तामाङ प्रवीण श्रेष्ठ प्रदीप लेखी अमिर लामा राजु राजदेव प्रवीण किराँत पिसा भूतिकाको ख थो समाचार छिपिन तथा सुना भले अलि थो जी फोटो न सूचना फनिस व नेवा पत्र राष्ट्रिय पत्रकार दौ या त छगो जीवो छाता छौ सल्लाह थुलिमासी नामे छमहे मिसापी जी ना न दुन्न मखन थन फोटे न मखन के मक्सा चाहिँ थो सोकगु मिज अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा पत्रकारिता सम्मेलन जिमाल के मक्सा मिसापी न दे भलेन छिपिनको समिति पक्का न मिसापी दु वेक अप इन त नछु छु भाला बिया सक्रिय यामाल न्याबले व नेतृत्व न मिज पिए जक बिगु मला छु न मेन निर्णय यामा स मिज पिजकै चुना निर्णय यागु थो प्रक्रिया त कमिले मुजलो थो चाहिँ 18 शताब्दी या पजुलो चिसा या 21 शताब्दी ख एजापति सा सिक्पि सा थो पाखे न बिचायन दि त इना पेना त से जाजो सजी मेगु मेथे

pangu ti patu gak nola sekusa jazo nepale jazo chinya nasuna dilor jazo saduji rashmila jazo sahak na megu bukhate ase talizu bhawani ya pangu ti sali to hebu bare chagu bukhando talizu bhawani ya khuya yungu gu chin pangu shatabdi pulang shatabdi ya pulangu aitihasik ti sali to he to ameriki sarkar ya pratinidhi li se kutniti kuta suru jugu do ye mahanagar palika ya karyabahak nagar pramukh sunta dangola nepay niti अमेरिका या कार्यवाहक राजदूत स्कॉट अरबम नापलाना तिसाली तहेगो कुता सुरु याना दिला दंगोलों देह दिए कथा ये पाखी खुयायंका विदेश या संग्रहालय थिंगुगु पुरातात्विक महत्व दुगु कानूनी व कूटनीतिक प्रक्रिया पुवंका थागु हे देशेली तहेगो अभियान ज्याचंगो दो खलाबलाये झोले कार्यवाहक राजदूत स्कॉट अरबम तया दिगो जिज्ञासा दंगोलों विधि पालना व मानव अधिकार प्रति पूर्ण प्रतिबद्ध जुया नागरिक तेगु अपेक्षा आधारित योजना या तो प्राथमिकता बियागु खोतो या दिला तले जो भवानी विशेषना निवास समुदाय स्टडी विलिसे मल्लकाल निसेया शक्ति शासन व समृद्धिया प्रतीख वेग को या तो दैवी शक्ति व मातृत्व मातृ शक्ति को थोना पुजाई कर्नाटक बंसी जुजु कर्नाट बंसी कर्नाटक मको कर्नाट बंसी जुजु हरिहर सिंह देव चिम पिंगुगु शताब्दी तलेजु भवानिया त नेपा त थगु ख अनलिपा मल्ल जुजु तलेजु या त थगु राजे या प्रमुख संरक्षक व कुलदेवी कथा इतिहासे बने भई नेवा समुदाय या तलेजु भवानी या त तान्त्रिक विधि पुजाई है अले तलेजु दिग या पुजारी ते त कर्माचार्य दाइ तलेजु भवानी या पूजा परम्परा गोपेजी हनुमान धोका खोप व यले तलेजु दिग थन लोक वा उगु दिग दे छक अछि दिग मोहन या महा नवमी खुनु जक सर्वसाधारण ते त च्याकी उख आशया ये महानगर पालिका या गो थकु त पु अनि अले तलेजु भवानी या पुलांगो तिसा लित हे त सफल जी आज जो स मेगो भुख तन दनी जी चिहा क छगु मेगो भुख ते तेना व चाहिँ खड्गी समाज ये जिल्ला समिति या महिला विभाग नि सङ्गो बारे जुल नेपाल राष्ट्रिय खड्गी समाज ये जिल्ला समिति या गोसाले काठमाडौँ महानगरपालिका या सांस्कृतिक भवन आइतबार महिला विभाग नि सङ्गो दु समिति या ये जिल्ला या नाय पुष्पराज खड्गी या नाय सुई मु पाहा मु नाय नन्दकिशोर साई त्वा देव च्याका उले जयाना जिल्ला स संगीता माथि खड्गी लस्कुस नोसु तयारी गुख उगु ज्याजोले ये जिल्ला दुज सपना साई या संयोजक गते अनुसाई विनीता साई पेमा तन्दुकार साई दिना साई लगायत नि धेमेसिया महिला विभाग नि सङ्गो जुल यो कोइको बितना छिक्ति सचाय तस्तम बालक जया फेमा रकान आशायन छना छिक बिन्द साई बिन्दुना बिया छना मिसापी नेवा मिस्त स्पेशली देह खसा उली संगठित मजु खला खला पुज त दै छु नि गो न मा पुज दका विशेषना चाहिँ थो ज्या पुसम दा दुनी मा पुज दका न यो कुरा चाहिँ ज्या छनि गो तर मेमेगो जाति दुनी दासा मिसापी उली संगठित मजु दे दबुए खला खसा दे दबुले न मिसा दबु दका दु तर न मिसा दबुले जातीय विविधता हेत चाहिँ तस्क थाकु छम दु दको जातीय पि न दु थाके त सुरी जिमी सँग जि चाहिँ न संस्थापक नायन जुल जिमी सँग सुरी चाहिँ पुत यान गु नेवा दे दबुले गुली न जातीय खला पुच त स्व ख वे कपि सकल सित पहुँच या जि सँग यान भले तस्क मसक न नेवा मिसा पि थेन ले आतक न वे क्रम ज्या छम दु एजा जि आशया त खड्गी समाज या महिला विभाग ये ये जिल्ला समिति महिला विभाग उनको अफिसर त सक्रिय रूपमा जे आफेमा दक्कु नेवा मिसा दिएको लागि उदाहरण नै रूप चाहिँ यहाँ भने फेमा त गर्न कामना हुन्छ न दक्कले लिपा हाक्न वंगु वाले हे जि यथनाको ख जि हाक्न सक्रिय पिटिया त आवेगु 24 गते श्रावणीय 24 गते अगस्त 9 ले चाहिँ हलि आदिवासी दिन मतलब विश्व आदिवासी दिन तका चाहिँ ला अले थुसी आदिवासी दिन भले चाहिँ छि आदिवासी त दक्कु छठ्या मुना छौ कथा चाहिँ शक्ति प्रदर्शन या चाहिँ मागुरु छारका पछि नसन दया पहिला न विविध कथा चाहिँ आदिवासी आयोग अले अथि प्रतिष्ठान थ चाहिँ मागु मखु रका चाहिँ खवै गुठुसी राज प्रतिष्ठान खारेज या गु रका आयोग सरकार बाखे होला अले यो कुनै डेलिगेशन त वना खारेज चाहिँ मयागु जुल तर छगु खछि पिसन सिके मागु खछुर गादैले
यदि प्रतिष्ठान खारेज जोसा जे आदिवासी न जुइमको मेबी सुनना आदिवासी जुइमको जे आदिवासी दगा सूचीकृत जुवा चोमले जिउ अधिकार कायदा थुलि थाकु समुदो कने प्रतिष्ठान खारेज जुला दासा नेपाली आदिवासी धापी मन त दासा जे स थगु ठ्याक गर्न माउनेको आगुलि न जे चाहिँ विशेषना बागमती प्रदेश निवास सांसद योको दुमला थौथौ थास खुल्ला रूपमा न झापी नदु खुल्ला रूपमा त्यहाँ म बिनदु अले तर अपराधी समानुपातिक चाहिँ आदिवासी जुगुले ल्याखौ चाहिँ थियो पियोको दुला एजा वो खसाई जिसमा एकदमै बिजायामा थिथि पार्टी दुन्ना आदिवासी या कोटा हे यो कोहे निवातन पार्टी या केन्द्रीय समिति थिएन चंगुदु एजा प्रतिष्ठान खारेज सुना हालते जुइ मजु अले प्रतिष्ठान खारेज मजुइ के त थुक्सी या अन्तर्राष्ट्रिय थो आदिवासी दिवस खुनु चाहिँ छि सकल ज्यामा छि सकल निवात एजा छि सकल सित जी एकदमै ला धन जोडे याना छि पिसा ला जोडे या खनि मखु एसा ला जोडे याना जी इनाप्या कि थुक्सी या विश्व आदिवासी दिवस तो खुला मञ्च जुइ दुङो दु अले थो चाहिँ भ्रिकुटी मण्डप र्याली ध्याना खुला मञ्च वइ ख 11 बजे भ्रिकुटी मण्डप मुनि गुरगा धागुरु छि 11 बजे लासा भ्रिकुटी मण्डप जाइ दिसा निवादे त वो देवातेगु राष्ट्रिय संस्था ख निवादे त वो निवातेगु संस्था जोजिया निवादे त वो नप्टा मञ्च पिराली जाइ दिफु अनि लिउने हरा जासा जिर मला वो तर ख मक्त तर न्यासा न थिन माल अले मखो पटिसा लिबाइ खसा छि डाइरेक्ट न खुला मञ्च न थिंगा दिफु यासा थुक्सी चाहिँ योको नेवा त अन थिंक मागो त कहे आवश्यकता दु वहे कारण नेवा दे दबल तो ये यला खोप जग मख कि थो सोनी गली कया गुली न जिल्ला त दुमला जसे धादिङ जिल्ला नुवा कोट जिल्ला मकवानपुर त मकवानपुर ल बसे ता पाहेसा मकवानपुर अले काभ्रे सिन्धुपाल्चोक मला ज सिन्धुली त गन जिस चाहिँ समन्वय याञ्चना गजुल एजा वो जिल्ला पाखे चाहिँ नेवा त योको संख्या वे ते मुदु छिपि थनिए सोनी गली चुनी पि नेवा तला झनिए थेने मागो त कहे आवश्यक जुल छि दे दब्लि वा छुन जाति संस्था आबद जुइमा हे दैगु मधु खाली आदिवासी जुगु ल्याख नेवा जुगु ल्याख चाहिँ अनथेंगा दि त जि दुनो गलन से इना प्यासे तम दकले लिपांगो मे सबु शिव अथन भजन दगा दे हमाल ओम मे चाहिँ ते थो भजन चाहिँ विशेष सना थ आश्रावण महिना अपयना चाहिँ शिव या भजन हालेगु यही सक्षय शिव खय ख मला शिव या वर्तन क्यागु यही तर जि वो कथा चाहिँ मखु थन छपु भजन के थेंग होला अमन कार्की जो चाहिँ ठो चोया दिएको छु ल अले ठो रिता महर्जन अमन कार्की रहेको छु तर ठो अमन कार्की मको अमन खड्गी ख गन्तक जिसियो थो मे चाहिँ अमन कार्की चाहिँ ल अमन खड्गी चोया दिएको रिता महर्जन अले चिना दिएको अले रिता महर्जन ब दीप तुलाधर यसले थोगो थो भजन द क्ले लिपाङ्गो थौ या मे कथा दिएतेना ना पछि सकल पाखेजी उज नफने ज्याजो यना दिगुली यो कोही कसुबा

कोई पुरानी याद मेरा रास्ता रोके मुझसे कहती है, इतनी जलती धूप में यूं कब तक घूमोगे, आओ चल के बीते दिनों की छाओं में बैठें,

सच तो ये है कसूर अपना है, चांद को छूने की तमन्ना की, आसमां को जमीन पर मांगा, फूल चाहा कि पत्थरों पे खिले, कांटों में की तलाश खुशबू की, आरजू की कि आग ठंडक दे, बर्फ में ढूंढते रहे गर्मी, ख्वाब जो देखा चाहा सच हो जाए, इसकी हमको सजा तो मिलनी थी, सच तो ये है कसूर अपना है।